0: पितर जो राम बसत है सचो तहि पहचानो।
1: छोड़ो दुनी
0: नौ प्रवाति शब्द आये छोड़ो दुनी परिता, छोड़ो दुनी परिता ए मन प्यारा।

0: तब अंबिका ये फुंदा खाए चले अथाऊ तिनों पिकाई का
1: जल तजिया पुनिया लो आकार का ओजिया के सोतू है जाने इतना बतेरी सार
2: नानक भगता पुख शैलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती सदा आनंद रहे।

बस बस दंगे मुकरमा है जैसे छाय जैसे गी हर बसे नरंतर कटकी भोजो पाई बाहर भीतर है

दुकान है ना दुकानदार, यहां कुछ भी नहीं। अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जय जय कार कीर्त सेवक की तहां तहां उठतावे सेवक को निकट ही हो निकट भी दिखाता है। असं निकट समझिए कलगीधर निकट उसदा है, पर जे समझिए दुकान प्रणाली दयाल स्वरूपे सदा अभ संगे अभंगन बन। लखमोर गंगा राम को लगी बिजनेसमैन तो अगे बड़ा सी, जो बिजनेस किया अगे नालों भी अमीर बन। सारी दिल्ली विच सेठ गंगा राम फर्मा चल रही हैं, नौकर चाकर कारोबार देशा प्रदेशा विच जहाजा ते माल पिया जाता। धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दरबार च एक दिन एक ब्राह्मण मथे ते तिलक लगा हुआ बेनती की थी, पातशाह मेरे उते कृपा करो। हजूर कह लगे क्यों भाई की चाहता है? रो पिया कह लगा पातशाह घर विच कन्या नौजवान हो गई, चाहता भी ये पारा सिर तो लै जाए पर कोल समर्था नहीं है। मैं इस चिंता विच रात दिन बीती सचमुच जिन्हें घर च बच्चियां नौजवान हो जाती माता पिता फड़े फिक्र पातशाह कृपा करो आप बख्शिश करो ब्राह्मण दी डगौरी हो। हजूर कह लगे कितनी माया नाल सर जाएगा? ब्राह्मण कह लगा महाराज ये 200-300 रुपया दे दो गरीबी दावे का कार्य कर देंगे, बच्ची दे हाथ पीड़े कर देंगा, हद पूरा हो जाए। हजूर कह लगे जे थोड़ी जी हिम्मत कर ले तो तेनू 500 रुपया मिल सके। महाराज वो किदा? अदूर कहणगे साडा गुमास्ता रहिंदा दिल्ली गंगा राम मुंडी लिखदे ने उथे चला जा 500। कहण लगा 7 बजे साहिबां ने मुंडी लिखी ब्राह्मण लैके दिल्ली पहुंच गए। पुछदा पुछांदा सेठ गंगा राम दे घर पहुंचे है, अगे उसे तरह दरबान खड़ोता है। अंदर जान लगा दरबान ने क्या पीछे हट, तू कौन है कितों आए हैं? इन्हें क्या मैं गोविंदवाल साहब तू आया गंगा राम नु मेरा काम की है? इन्हें क्या मेरे को हुंडी है? शकलवाल वेख के दरबान ने बड़ी नफरत की थी, किथे हुंडी दिखाई? दरबान कहने लगा फिर ठहर जाए पहले सेठ तू इजाजत ले जाए। गंगा राम बाहर खड़ोते दरबान अंदर चला गया। अगे गंगा राम बड़े ठाठ गद्दे लगा के बैठा है, नौकर चाकर एक पासे मुरी भैया लेके बैठे। दरबार ने कहा सेठ जी एक आदमी आया उसके को हुंडी है तुहानू मिलना चाहता है। गंगा राम ने कहा भेज दो। अंदर चला गया ब्राह्मण, आवे किस तरह है? गंगा राम मेरे को हुंडी कहदी हुंडी है? धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने हुंडी भेजी। सोचन लगे सिर नु खुरकन लगे कह लगा केड़ा अमरदास? आखो श्री वाहे केड़ा अमरदास? ब्राह्मण ने कहा अमरदास नहीं तन श्री गुरु अमरदास पातशाह। हां हां ओ बुढ़ा अमरदास आखो श्री वाहे। ब्राह्मण नु बड़ा गुस्सा आ गया, गंगा राम अज गुरु नु बुढ़ा पिया कहिंदा है, इसने तेरी पत रखी अज ये की वचन कर रहे? गंगा राम ते गुरु ने हुंडी भेज दी है? हां तो गंगा राम ने मुनीमा वाल इशारा किया, देखो भाई कोई गुरु अमरदास पातशाह जी का साडे

तारियां मार के सत्संग रूपी मानसरोवर में आप जी ने धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त की। आज पूर्णमासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम से कितनी रहम, सोचांगे गंगाराम ने भूल की थी और गंगाराम ने तक एक बार की थी असि रोज कर जाते और दूजे पासे माया जितनी लग जाए गुरु और संकोच कर पर नहीं, माया तो वही साड़ी है जिड़ी चंगे पासे गुरु वाले। साईं तुलसीदास ने लिखे माया है दो भात की, दो चलावे राह एक ले जावे नरक को एक सब शराबा को बाबा च माया ला दो नरका का बुआ खुल जाए, गुरु दे लेखे ला दो गुरु नरक न जोड़ दो। तुसी जिथे तन मन न आके जुड़े अपने तनों भी पवित्र दर्शन पे शब्द दीते शब्द गुरु का रूप है। बाबा जी वचन कर दे सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की थी। बाबा ईश्वर जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसे नु की दे सकता है, ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा है, मानो शब्द वाला ही सिख दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा आप शब्द का आदर कराउंदा है। ते बाबा जी कहने लगे फिर बख्शिशी गुरु आप ही कर तो आप जी ये समा एक दिन नहीं दो दिन नहीं कुछ दिन तो आप निकले हिस्सा अमृत वेले भी आके जुड़ते हो जिस प्रोग्राम नो कदे बना रहे सन बरफरदार सरदार गुरचरण सिंह जी बीबा हरबंस सरदार करनैल सिंह जी सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे दे प्रबंधक आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बनिया वीक दिन तो बनाए प्रोग्राम सार दास पहुंच गए मार्ग दे दर ते हाजरियां भर रहे हैं हम बाकी दो ही दिन विच रह गए कल ते परसों सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना फिर नदी नाम से इतने साल 50 साल हो गए हैं कीर्तन कर रहे हैं पहली बारी इस ग्राउंड के दर्शन हुए गुरु खान के दर्शन ताकि पीछे हुए अरे सस्थान आओ जो अगला प्रोग्राम है आप जी का नितनेम है अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है वो प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसे तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको। अन गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा आप जी दे दरो करो वरसाए हुए गुरसिख माई पाई पातशाह आप जी की दिती हुई दात सफल करते हुए शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्तन कौन अरदास कराते हैं आप अपने गुरसिखा दमाइया च बरकता पाओ आप अपने गुरसिखा सिखी जीवन बच्चे बच्चिया चढ़दिया कला पाओ।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है। जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा।

कै मन लाजुम रसा, अवरा पे कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत खडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

जाग दे विच ए बंदिश गरीब निवाज हुसैया मेरा माथ है छत्र है ए ताले दे विच ए पावन शिव सरवर करो ई।

इतनी सेवा प्रवान करनी। ए वीक सरदार अनुका सर गुरुद्वारे से जो इस बबनी बन सकिया सरवीर जी ने हुक्म किया है अपने गुरुद्वारे इथे हाजरी परसो थनता दे योग योग की आप दी अपने दुनिया के कम मकाज में त्याग के गुरु महाराज जी चरण सरण ची बैठ के अमृत में हरी जस हरी कीर्तन बड़ी सरदार ते भावना ना सरण करे महाराज बख्श कर सारे की हाजरी दर के लाऊ सारे दे सिरा दे उत्ते बख्श बरहत रखा ते नाम दान ਸਰਬਤ ਮਾਏ ਮਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਛੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਫੈਲਣ ਜਾਏ ਜੱਪੋ।

चने नक्तरी आओ पैव जगन कटे बेकार पैव धरती जब बेकार पैव चंद्र से पार पैव चराजा तक्वार पैव सुनो पैव चंद को प्रोडी चंद्रनाथ पैव सिद्ध सुनार पैव चाडाने आकाश पैव जोत मामल सूर पैव जावे जावे मोर सर्य पौन के सिद्धे नानक ने पौन निरंकार सचे मल्ला पहला नानक ने पौन निरंकार होते तेरा अनुवाद कितने कन कहानियां कितने भेद विचार।

0: रहने पर पानी में संतज सूरज उतार सभी धरती माल तन पर संतजार नाम गुरु सह ज्ञान में होई भाग गया जमकाल मुदा पहला
1: वाइन चले न चंबुर पर लान फिर सिर उड़ो रामा चढ़े पाए वे खेलो कसे कर जाए रोटियों कारण पूरे तालाब छड़े धरती नाल का उन गोपियों का उन कान गाव सीता राजे राम फिर पाओ निरंकार सच नाम जाकर किया सरल जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ बिनी रंजना मचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नगर करी नगरी कर्म लगाए पार बोलो चखा चक्की चक थल मारो ले बहुत आनंद लाटू मा दाणी आन गा पखी पौंदियां लैना सा सुए चढ़ को आइए जंत नार पौंदियां गड़तना आत
2: बंधन मन पाए सुए पैके तुझे सब कुए नच नच से चले सरोट न जाई सदना होए।

0: माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुला नू खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नू आखन लगा, ऐ राही आ मैं तेनू अपना बगीचा विखावां। किदे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया आखन लगा, रात नू आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही ता टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नू मिद मिद के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां तले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ए पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मूंह दे के रोई जांदे, ए हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा, हुण विखा अपना बगीचा। ए राही दा हथ फड़ के माली कहंदा, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे आ फुल लगे सन। एक एक फुल दा ना लै लै के, बूटे दा ना लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नू पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटा। ऐ मनुख तू भी कदी छाती।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
0: तू भी कदी छाती।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

हम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर च नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नू सोल, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदत, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिना दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो ये बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहिंदे ने इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

कोई इंतजार करे कि कुछ बोलन। कई दफा असी सड़प हुए पे होने पे बोली क्यों जा रहे। इस करके बाबा जी आखदे बहुत घट बोलो, बहुत घट बोलो ताकि दूसरे ईगर होणगे तो कुछ सुन दे ले। अते एक अभ्यास ये करो कि जदों कोई मंच थॉट आंदा है बोलन ले कि सवाल कर दें थोड़ा बोलन का अभ्यास किवें करिए, थोड़ा बोलन का अभ्यास किवें करिए। उसका एक ढंग है कि जदों तुसी बोलन लगे हो कुछ कहन लगे हो उदों मन च एक थॉट सोच लो पहला कि जे अगर मैं ना बोलना तो फिर की फर्क पै जाएगा। What difference it will make if I don't say anything? आप जी देखोगे कि तुहाडी 75% जो है बोलन की जरूरत जड़ी है वो घट जाएगी, नहीं रह जाएगी। There is no need to keep on talking all the time. Silence भी develop करनी चाहिए है। Body साड़ी नू साइलेंस दी भी जरूरत है। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना, ये भी साधना है देही दी। बहुत ज्यादा देखना भी वो भी गलती है। इस करके ये भी अभ्यास करना चाहिए है कि हर वेले कुछ ना कुछ देखते ही नहीं रहना चाहिए। जदों देखण की जरूरत है उदों देखो। हुण गुरुद्वारा साहब दे विच अखां बंद करके बैठन की आदत पानी चाहिए क्योंकि इत्थे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पर असीं आले दुआले देखते रहिए कौन आउंदा है कौन जाउंदा है किसी ने की पाया है किसी ने की नहीं पाया। उहदे नाल माइंड एक्टिवेट हुंदा है, फिर माइंड अपनी जजमेंट पास करता है। अखियां नूं भी बंद करन दा एक अभ्यास है कि तुसीं कल्ले बैठे और अखां बंद करके बैठ जाओ। और जे जदों कुछ सुनन दी नहीं जरूरत उदों बिल्कुल ना सुनो, जदों कुछ कहन दी नहीं जरूरत उदों कुछ ना कहो। जदों भी बोलन नूं दिल करे कुछ कहन नूं दिल करे अपने अंदर यह सवाल लियाओ कि अगर मैं ना कहां तो फिर की फर्क पै जाएगा। कोई फर्क नहीं पाएगा। सो थोड़ा बोलना, देही नूं सोधना। महाराज जी कहिंदे रत्ना की ललता है, ताकि जदों बहुत थोड़ा बोलोगे जिहड़ी एनर्जी वेस्ट हुंदी है बोलन दे विच उह जिहड़ी है उह बच जाएगी। अते बहुत सोच समझ के बोलोगे ते कहिंदे हन फिर तुहाडा बोलना इस तरह होएगा जिवें तुहाडी जबान दे विचों बोलां दे विचों रतन जवाहरात निकल रहे हो, हीरे निकल रहे हो। रत्ना की ललता कंगू की काया देही नूं इतनी शुद्ध इतनी प्यारी होवे कि इतनी स्वच्छ होवे कि एक केसर वर्गी होवे। जबान जड़ी है कहिंदे ओ इस तरह की होवे जिस तरह ललता इस तरह की होवे जिस तरह इस दे विचों मोती किर रहे होण। रत्ना की ललता अगर वास तन सास, तन दे विचों जिहड़ा श्वास आ रहा है अते जा रहा है। अगर वास एक जंगलां च दरख्त हुंदा है जिसकी बड़ी अच्छी सुगंधी हुंदी है, कहिंदे हर श्वास दे विचों कहिंदे वाहिगुरु परमेश्वर की याद आवे ते उसकी सुगंधी आवे। हर श्वास दे विचों वाहिगुरु की याद की सुगंधी आवे। अगर वास तन सास 68 तीर्थ का मुख टिक्का, कहिंदे फिर वो बॉडी इस तरह की बन जाएगी जिदा 68 तीर्थां दा टिक्का उसके मत्थे ते लगा है। भाव उस इंसान नूं अगर कोई देखेगा तो इस तरह लगेगा कि 68 तीर्थां दा ही दर्शन हो गया। 68 तीर्थां दा दर्शन उसके शरीर नूं देख के ही हो गया। दर्शन भेट तो होत निहाल 68 तीर्थ का मुख टिक्का तित घट, कहिंदे इस तरह की जिहड़ी देही सोधी हुई है उस ही हिरदे दे विच वाहिगुरु वाली मत जिहड़ी है उसका विकास हुंदा है वो खिड़दी है। तो सब तो पहला पॉइंट है अपनी देही नूं डिसिप्लिन च लियाना। खाना पीना बोलना चलना सुनना देखना इत्यादि। आओ उस तो बाद क्योंकि महाराज जी ने आख्या भांडा धोए, इस भांडे नूं धोना है। यह शरीर रूपी भांडा है, अंदरों मैला होया पिया है, इसनूं साफ करना है, इस दीआं आदतां नूं साफ करना है। सो इस भांडे नूं योग बनाना है कि इस नाम रूपी अमृत पै सके। बैस धूप देवो तो दूधे को जावो,
इस भांडे नूं धोवो, सुगंधी दिओ, इस दे विच वाहिगुरू दे प्यार दी सुगंधी होवे, शुभ गुणा दी सुगंधी होवे, निम्रता दी सुगंधी होवे। इस भांडे च निम्रता होवे, इस भांडे दे विच केयरिंगनैस होवे, गिविंगनैस होवे, इस भांडे दे विच फॉरगिविंगनैस होवे, माफी होवे, इस भांडे दे विच तमाम किस्म दे गुण होण, इस भांडे दे अंदर श्रद्धा होवे, कहिंदे तां इह जाके भांडा शुद्ध हुंदा है। ते जदों इह भांडा शुद्ध हुंदा है, तुसीं इक लैवल ते कम कर लिया, हुण अगला है दूसरा लैवल, वह है माइंड दा। माइंड दी साडी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आखदे हन

ऐ मां मेरा मन मेरे वश च नहीं। साडे जिहड़े ख्याल हन वह बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्हां नू लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्हां नू आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल you will find a great difference in your quality of mind and you will achieve stillness of mind. Abhyas ki hai? Bani ch is tarah ke.

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by, can they try to see the whole process of thoughts coming and going. अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह सी बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है, जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है असि अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं, टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हें देखते हैं, इस तरह महसूस करो कि there is a drama of thoughts is going on and you are not part of it, you are just witnessing. अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हें इनडिफरेंट होके उन्हें अलग होके जस्ट वॉच दैम. सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स, तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए. आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम, सिर्फ उन्होंने देखना है. अपने विचार अस्वारी कीजिए दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है. अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है. जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा. थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, ता थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है. जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं. वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग. सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स. तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधदे जाएंगे, जदों गैप्स लंबे होंदे जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करने वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वह है आत्मा, वह है वाहिगुरु जी की अंश, वह है वाहिगुरु जी की जोत. सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असी उसनु पावांगे उत्थे मौजूद. उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनेक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा. सो टेक्निक है, अपने विचार अस्वारी कीजिए, ते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ?

खुशियां बादशाहियां ये सतगुरु नजर करे। आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट बिकम्स ब्लेस्ड इफ आई रिसाइट द ट्रू वर्ड। ही हु इज डेस्टिन्ड एंटर्स द लॉर्ड्स कैसल थ्रू द गुरुज ग्रेस। माइंड यू माई माइंड द वन एंड वन अलोन Without him, all else is waste, illusion, maya, and false love. One enjoys myriads of joys, one is a king if the Lord's grace be upon him.

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

हर निर्धन मनी ताकी कछु न कानी रे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल वडानी रे रे सिनान का कौन रे जर संग अनुप तंग सुरंग सवारे कोट तो रंग को रंग से कूदत पौन के गौन को जात ने पारी पुजान के भूप बली।

सकल जगत है जैसे सपना बिन सत लगत न बा बारू पीत बनाई रच पद रहत नहीं दिन जा तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवा अजो समझ रच बिगड़ो ना अजहूं समझ कच बिगड़ो ना भजले नाम मुरा भजले नाम मुरा।

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो बदला कातूरी को गाहक आयो लाद्यो कल बिरख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी क्यों पुरज पहा मोहन ठगौरी

पावन बाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा च पढ़ने लिए हाजिर होया। गुरु गोबिंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोबिंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हूं, शस्त्र का पुजारी हूं। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैनू होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैनू यह भरोसा है जिसके कोल शस्त्र है और जिस

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धड़क धार अनियर धनसबान और उसने तीर जेड़े ने अनियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जेड़े दूसरे तीर ने ना वो वज जानना ते मुड़के कढ़े जा सकते हैं ते आदि बच सकता है, पर अणियर तीर जेड़े ने वो बार नहीं हो गए। जो एक बार अंदर तस जानना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी ओदिया दो कड़िया होंगे एव मुड़िया हुई है, एक सीधी होंगी तो दो एव मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहदिया हम आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं सी होना जोड़ा होया, पता की हाल हो सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन करने लिए आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए उन्होंने नहीं सी पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई से, एक ने सरिया मार गया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वो जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वह दाड़ी भी सिखा की चट फूकते थे ना अग लाती उथे सड़ बह गए। जिहड़ी बीबी जी सी बेचारे बड़े मायूस घबरा गए भजन की कोशिश पर दुष्टा को कितने भजना कोल ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अणियर ना कबंध कोरड़ा तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी जाके हम भी सी यार वेखना सी ये कोल सी बाकी कुछ नहीं सी गहने पाए से उन्हें दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क के शरेआम बेइज्जतियां कीतियां उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धियां नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जाके छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साडे ते उपकार किए ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लेंगे यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया कुरलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब एम सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुम उठो अपने साहबजादे क्या उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हों को एड्रैस लै लो और उस देवी हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित के घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ। उन्हां पंडितों ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिया करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कही नहीं जाती। लेकिन मैं कहना सिंगो यह पांच शस्त्र रखो धड़कधार अणियर ऐसे तीर रखो जो बाहर आने लगे नाल आंदरा कमंध कोरड़ा। कमंध कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हुंदा है यह सरिये लैके आते ना मारन वह सरिया लैके जो आवे कमंध कोरड़ा ऐ भुआ के सरिये से मारी दा वह फिर ऐ बल पा के सरिये नूं काबू कर लैंदा खिच के सरी अगले का अपने हाथ च फड़ लेता उन्होंने हथे कर छुटी एको ही छुट्टी का बस फिर बोले जो इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो यह तुसी पढ़ करके जाओ शस्त्र की धार नहीं बनना डरना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत सब सिखाया खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी कृपाल का भी शिकार सकते होर भी किसी चीज खंडे का खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा खंडे का अर्थ है मौत ते महाराज ने उन्हें पानी घोल के सिख नूं प्यार दिता मौत नूं घोल के सिख पी गया सिख गुरु का सिंह मौत नूं घोल के पी गया ते दुष्ट कहिंदा मैं तेनूं वेख लूंगा
ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਏਕਲ ਰਾਹੂ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

अपने हत्था के पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बसिया आप कराए करे आप हूं कैसो करी पुकार नान करना जिन किया तुसी करनी सा।

any number and something surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसने यहां सारियां मंगा पूरी है।

0: देख रहे
1: हाँ।
0: तो भाई ये दरगाह ही थी हर बाजू बच्चों कर दे सर टिकट नो कितना सवाल के यूके जाना हो हजारा रुपए की टिकट होती होती भी समान ए टिकट जो सिर दे के वाहगुरु जो शब्द गुरमंत सानू गुरु तो गुरमंत्र जो नाम है ना तो सानू गुरु और कोई नाम नहीं दे सकता नाम पूरे गुरु तो मिले ते नाम दी जो प्रेरणा है ते नाम जपन वाले महापुरुष नाम गुरु तुम नाम अमोलक रतन है पूरे सदगुरु पूरे गुरु तू किस वेले मिलते जिस वेले असी अमृत छक पंजा प्यारे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी जिस वेले पंज अपनी कुलां नूं सोध अरदास कर अमृत तैयार कर दे कलगीधर पिता जी का हुक्म है कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी भी जिस वेले पंज प्यारे त्यार पर त्यार अपने सोध के अपने आप को सोध के साहबा की हजूरी खड़ोते होते हैं हजूर कहना उन्हें पंजा के अंदर मैं आप आ गया पंज परवान पंज प्रधान पंजे पावे पंजे सो है इतने कोई व्यक्ति नहीं व्यक्ति पंजा ही शामिल कलगीधर पातशाह जी ने इन बंधना कट दिया कोई नहीं पर जो गुरसिख बाणी का निकले भी प्रेम गुरु के हुक्म च रहन फिर अमृत पान कराने को पहला फिर भी अरदास कर आदशाह कलगी जी हर वेले हर श्वास बोले ना आप वापिस करो पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगे गुरु बख्श प्यारे त्यार कर अमृत छकने वाले उस वेले गुरमंत्र की दात गुरु गुरु तो मिलेगा इस नाम की प्रोता महापुरुष बाबा जी बचन करते सन गुरुआ गुरु गुरु ग्रंथ पर संगत महापुरुष केड़े महापुरुष दी जेड़े सन गुरु ग्रंथ साहब ने जेड़े तोड़ते उन्होंने संगत महापुरुष बचन करते सन जो गुरु ग्रंथ साहब तो पिया तोड़ता है वह सानू गुरु तो तोड़े संगत नहीं जेडे जुड़न वाले हैं जिन्हों की संगड़िया दुरमत मजे मित्र सारे सही हाँ नुढ़ेंदी जग सभाया जन नानक विरले किन है ही कोई नहीं भाई है विरले ना ही घने फैल पकड़ नानक फोटो देखो ना भी किसी चीज का नाम दिख जिस तरह मास्टर इनम नहीं ना बन सकते मास्टर हो इनम हो इसे तरह संत सारे चले हैं पर जो धन गुरु नानक पातशाह जी का संत है गुरु सिख है महापुरुष है वो आप गुरु नहीं बनेगा संत बड़ा जोड़ देना महापुरुषा की संगत नाल संत
2: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अपने ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे पत पवित्र लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो।